0: You are tuned to the voices of the subcontinent.
1: रेडियो हारमनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हारमनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हारमनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर 1 घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज हम अपना कार्यक्रम दुर्गा माँ के एक भजन से आरंभ करेंगे।

ये सुंदर भजन गाया था हेमंत कुमार ने। आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता। मित्रों, 27 मई को ईद है। इंटरनेशनल डेज में 15 मई का इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, 16 को नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, 17 को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और आर्म्ड फोर्सेस डे, 18 का है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 21 को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, 22 का इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 24 को गुजरात डे है, 26 का नेशनल मेमोरियल डे और 31 मई को एंटी टोबैको डे। दोस्तों, हार्मनी आपसे जानना चाहता है कि आपको हमारा ये फॉर्मेट अच्छा लगता है या आप कुछ और तरह से इस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं। क्या आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है और क्या आप किसी विशेष मुद्दे की कवरेज चाहते हैं, आप ज़रूर लिख भेजिएगा हमें harmonyfm2xx@gmail.com पर। दोस्तों, 10 मई को इस महीने का दूसरा रविवार था। दुनिया भर में इस दिन मातृ दिवस के रूप में मानते हैं। रेडियो हार्मनी आज का कार्यक्रम माँ को समर्पित कर रहा है। आशा है कि आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे जीवन में माँ को का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। न सिर्फ माँ हमें जन्म देती हैं, वे हमारे पालन पोषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारे चरित्र दूसरा रविवार था। दुनिया भर में इस दिन मातृ दिवस के रूप में मानते हैं। रेडियो हार्मनी आज का कार्यक्रम माँ को समर्पित कर रहा है। आशा है कि आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे जीवन में माँ को का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। न सिर्फ

0: माँ का योगदान दिखाई देता है। माँ हमारे लिए पूजनीय है और साल में इस एक दिवस पर हम उनके प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा की भेंट देते हैं। इसे बड़ी सुंदरता से श्री अमिताभ बच्चन ने कहा, तो आइए उनकी आवाज में सुनते हैं ऑन मदर।
1: टेक्नोलॉजी द्वारा बस यूं छुट्टियों में हल हो जाता है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे पास तब से मौजूद है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये टेक्नोलॉजी आज भी वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और इस अद्भुत टेक्नोलॉजी का नाम है मां। देवियों सज्जनों, मां दुनिया की वो टेक्नोलॉजी है जिसका न तो कोई विकल्प हुआ है और ना ही कोई विकल्प हो सकता है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान उनके पास ना हो, ऐसा कोई समय नहीं जो उनके पास हमारे लिए ना हो। उनका कनेक्शन किसी बैटरी या तार से नहीं होता, उनका कनेक्शन दिल से होता है। और इस टेक्नोलॉजी का जो कवरेज एरिया होता है उसे नापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मां की जो सबसे खास बात होती है वो है उनका स्नेह भरा स्पर्श। इस स्पर्श की आज तक न तो कोई तकनीकी बराबरी हो पाई है और न हो पाएगी। ये अपने स्पर्श से हमारे दुखों को डाउनलोड कर लेती हैं और खुशियां हमारे लिए अपलोड कर देती हैं। शायद इसीलिए कंप्यूटर जैसी मशीन को भी चलाने के लिए एक माँ यानी मदरबोर्ड की जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो ये थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपने ही अंदाज में माँ को श्रद्धांजलि दी। मदर्स डे संयुक्त राज्य अमेरिका में मई के दूसरे रविवार को मनाया जाने वाला एक वार्षिक अवकाश है। मातृ दिवस सामान्य रूप से माताओं, मातृत्व और मातृ बंधनों के साथ साथ उनके परिवारों और समाज में उनके सकारात्मक योगदान को मान्यता देता है। इसकी स्थापना एना जार्विस द्वारा की गई थी, जिसमें पहला मातृ दिवस 10 मई 1908 को ग्राफ्टन, वेस्ट वर्जीनिया में सेंट एंड्रयूज मेथोडिस्ट चर्च में पूजा सेवा के माध्यम से मनाया गया था। लोकप्रिय अनुष्ठानों में हॉलिडे कार्ड और उपहार देना, अक्सर कार्नेशंस जो फूल होता है उसके वितरण के साथ चर्च जाना और पारिवारिक रात्रि भोज शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मातृ दिवस परिवार के सदस्यों का सम्मान करने वाले समान समारोहों का पूरक है, जैसे का पिता दिवस, भाई बहन दिवस और दादा दादी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मातृ दिवस समारोहों की उत्पत्ति और परंपराएं अलग अलग हैं, कुछ इस हालिया अमेरिका परंपरा से भी प्रभावित हैं।

0: ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हम अपनी माताओं को भगवान मानते ही हैं और उसी रूप में भगवान को देखते हैं। तो ये था फिल्म दादी माँ से गीत, जिसे गाया था मन्ना डे ने और महेंद्र कपूर ने। फ्रेंड्स, इट इज़ अ मैसिव ईयर हियर एट 2XX। वी आर ऑफिशियली 50 ईयर्स ओल्ड। दैट्स 5 डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट रेडियो, community stories, and some of the best music in Canberra. So help us celebrate 50 years. We want to hear from you. What's your favorite memory of the station? Head over to our Facebook or Instagram. Use the hashtag 50years2XX and share your stories. You might even hear your memory featured on air. आप सुन रहे हैं Radio Harmony और आज हम माताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला शांति समूहों ने शांति के पक्ष में और युद्ध के खिलाफ छुट्टियां और नियमित गतिविधियां स्थापित करने का प्रयास किया। एक सामान्य प्रारंभिक गतिविधि उन माताओं के समूहों की बैठक थी जिनके बेटे अमेरिकी गृह युद्ध के विपरीत पक्षों में लड़े थे या मारे गए थे। 1868 में एना जार्विस की मां एन जार्विस ने मदर्स फ्रेंडशिप डे की स्थापना के लिए एक समिति का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य गृह युद्ध के दौरान विभाजित हुई परिवारों को फिर से एकजुट करना। एन जार्विस, जिन्होंने पहले टाइफॉइड के प्रकोप से गुजर रहे यूनियन और कॉन्फेडरेशन शिविरों के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार के लिए मदर्स डे वर्क क्लब का आयोजन किया था, इन्हें माताओं के लिए एक वार्षिक स्मारक में विस्तारित करना चाहती थी। लेकिन वार्षिक उत्सव की स्थापना से पहले 1905 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बेटी, जो लगभग उसके प्रति आसक्त हो गई थी, अपनी माँ के प्रयासों को जारी रखेगी। 1870 और 1880 के दशक में कई समिति अनुष्ठान थे, फिर भी किसी ने भी स्थानीय स्तर से अधिक प्रतिध्वनि हासिल नहीं की। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रोटेस्टेंट स्कूलों ने पहले से ही बाल दिवस, टेम्परेंस संडे, रोल कॉल डे, डिसीजन डे, मिशनरी डे और अन्य जैसे कई समारोह और उत्सव आयोजित किए थे। न्यूयॉर्क शहर में जूलिया वार्ड हाउए ने 2 जून 1872 को युद्ध विरोधी शांति के लिए मातृ दिवस का नेतृत्व किया, जिसके साथ दुनिया भर में नारीत्व के लिए अपील भी शामिल थी। मातृ दिवस उद्घोषणा के रूप में जाना जाता है। हाउए के प्रयोजन के तहत बॉस्टन में लगभग 10 वर्षों तक यह अनुष्ठान जारी रहा, फिर खत्म हो गया। इन समारोहों में दुनिया भर की माताएं विश्व शांति की दिशा में काम करने लगीं। कई वर्षों के बाद 13 मई 1877 को एल्बियन मिशिगन में संयम आंदोलन से संबंधित विवाद पर मातृ दिवस का आयोजन किया गया। स्थानीय किंवदंती के अनुसार एल्बियन के अग्रणी जूलियट कैलहॉर्न ब्लेकली ने रेवरेंड मायरॉन डॉटर्टी के उपदेश को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया, जो व्याकुल थे क्योंकि एक स्वभाव विरोधी समूह ने उनके बेटे और 2 अन्य संयम समर्थकों को बंदूक की नोक पर एक सैलून में रात बिताने के लिए मजबूर किया था और सार्वजनिक रूप से नशे में धुत हो जाने पर मजबूर किया था। मंच से ब्लेकले ने अन्य माताओं से भी अपने साथ आने का आह्वान किया। ब्लैकले के दो बेटे, दोनों ट्रैवलिंग सेल्समैन, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल वापस आने की कसम खाई और अपने व्यावसायिक संपर्कों से भी ऐसा करने का आग्रह करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनके आग्रह पर 1880 के दशक की शुरुआत में एल्बियन में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च ने माताओं के विशेष योगदान को पहचानने के लिए मई के दूसरे रविवार को अलग रख दिया। नोटरडेम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और प्रशासक और फ्रेटर्नल ऑर्डर ऑफ ईगल्स के अध्यक्ष फ्रैंक ई हेरिंग ने 1904 में माताओं और मातृत्व की यादों के लिए राष्ट्रव्यापी स्मारक के रूप में वर्ष में एक दिन अलग रखने की अपील की। नोटरडेम के छात्रों की एक कक्षा को अपनी माताओं को होम पेनी पोस्टकार्ड भेजते हुए देखने के बाद हेरिंग अगले दशक के लिए राष्ट्रीय मातृ दिवस के लिए एक मुखर वकील बन गए। जैसा कि हेरिंग ने स्कोलास्टिक के 1941 अंक में कहा था, पूरे इतिहास में दुनिया के महान लोगों ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपनी माताओं को दिया है। होली चर्च इसे मान्यता देता है, विशेष रूप से नोटरडेम और हमारी लेडी जो इस पर नज़र रखती हैं, हमारा महान संस्थान। आइए एक और महान हस्ती को सुनते हैं जिन्होंने अपनी माँ के बारे में इस तरह से कहा, इतना सेंसिटिविटी और इतने फीलिंग से कहा, और वो हैं श्री नरेंद्र मोदी।
1: I understand that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her.
2: मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ, मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे

0: आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है।
1: ये थे माननीय श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जी, और यह वाक्य उन्होंने कहे फेसबुक के फाउंडर से बात करते हुए।

फिल्म छोटा भाई ये आई थी 1966 में। इसके लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने और म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। आप सुन रहे हैं रेडियो हारमोनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता, और आज हम दुनिया भर में हम सभी की माताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, मार्केट और एन जूनिपर स्ट्रीट पर मदर्स डे ऐतिहासिक मार्कर फिलाडेल्फिया में लगा है। अपने वर्तमान स्वरूप में मदर्स डे की स्थापना एना जार्विस ने 9 मई 1905 को अपनी मां एन जार्विस की मृत्यु के बाद फिलाडेल्फिया के व्यापारी जॉन वानामेकर की मदद से की थी। जार्विस ने कभी भी होवे या मदरिंग संडे का उल्लेख नहीं किया और उन्होंने कभी भी किसी संबंध का उल्लेख नहीं किया। प्रोटेस्टेंट स्कूल के समारोहों में हमेशा यह दावा किया जाता था कि मदर्स डे की रचना केवल उन्हीं की थी। 12 मई 1907 को वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में एंड्रयूज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में एक छोटी सी सेवा आयोजित की गई थी, जहां एना की मां संडे स्कूल में पढ़ाती थी। पूजा की पहली आधिकारिक सेवा 10 मई 1908 को उसी चर्च में हुई थी, जिसके साथ फिलाडेल्फिया में वानामेकर के स्टोर में वानामेकर ऑडिटोरियम में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। अगले वर्ष इस दिन को न्यूयॉर्क में व्यापक रूप से मनाए जाने की सूचना मिली। इसके बाद जार्विस ने मदर्स डे को पहले अमेरिकी राष्ट्रीय अवकाश और फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के रूप में स्थापित करने के लिए अभियान चलाया। 1910 में वेस्ट वर्जीनिया राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर छुट्टी की घोषणा की गई और बाकी राज्यों ने तुरंत इसका पालन किया। 10 मई 1913 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सभी संघीय सरकारी अधिकारियों को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में अगले दिन सफेद कार्नेशन पहनने का आह्वान किया गया। 8 मई 1914 को अमेरिकी कांग्रेस ने मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में नामित करने और एक उद्घोषणा का अनुरोध करने वाला एक कानून पारित किया। अगले दिन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने एक उद्घोषणा जारी कर पहले राष्ट्रीय मातृ दिवस की घोषणा की। अमेरिकी नागरिकों के लिए उन माताओं के सम्मान में झंडा दिखाने का दिन जिनके बेटे युद्ध में मारे गए थे। 1934 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने छुट्टी की स्मृति में एक डाक टिकट को मंजूरी दी। मई 2008 में प्रतिनिधि सभा ने मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रस्ताव पर दो बार मतदान किया। पहला प्रस्ताव बिना असहमति के पारित किया गया। सेंट एंड्रयूज मेथोडिस्ट चर्च, जहां पहला उत्सव आयोजित किया गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस तीर्थ स्थल है और एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल है।

फिल्म थी मेरे दो अनमोल रत्न, जो आई थी 1998 में, और गाने वाले थे कुमार शानू और सोनू निगम, पूछो ना कैसी मेरी माँ। बहुत से लोग अपनी माँ या माँ जैसी शख्सियतों की सराहना करते हैं, जिनमें सौतेली माँ, रिश्तेदार, अभिभावक और करीबी पारिवारिक मित्र शामिल हैं। कुछ संगठनों ने में मदर्स डे के संरक्षक होते हैं, जो मदर्स डे के आयोजनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया और सामान्य समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं, जिनका उद्देश्य धर्मार्थ या गैर लाभकारी कारणों के लिए धन जुटाना होता है। मातृ दिवस के कार्यक्रमों और गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि स्तन कैंसर अनुसंधान जैसे कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए सैर या दौड़ का आयोजन किया जाता है, चिड़ियाघर, सिनेमा या वनस्पति उद्यान या अन्य रुचि के स्थानों का दौरा किया जाता है, नाश्ता, ब्रंच, दोपहर का भोजन, दोपहर की चाय या रेस्टोरेंट, कैफे या घर पर रात्रि भोज, माताओं या मातृ आकृतियों को हस्त निर्मित उपहार या कार्ड प्रस्तुत किए जा रहे हैं, फूल, चॉकलेट, कपड़े, उपहार वाउचर और अन्य उपहार जो माताओं या मातृ आकृतियों को दिए जाते हैं, मातृ दिवस पर कविताएं मुद्रित प्रसारित या माताओं और मातृ आकृतियों को प्रस्तुत की जा रही हैं, मातृ दिवस की कहानियां पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट पर प्रचारित की जा रही हैं। यदि मौसम अनुमति दे तो कई परिवार मदर्स डे पर पार्क या समुद्र तट पर पिकनिक मनाते हुए भी दिन बिता सकते हैं। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में सितंबर के पहले रविवार को फादर्स डे भी मनाया जाता है। मदर्स डे कोई संघीय अवकाश नहीं है, बल्कि यह रविवार को होता है, जब कई संगठन, स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां अपने सामान्य रविवार के शेड्यूल के अनुसार चलती हैं और रेस्टोरेंट या कैफे सामान्य से अधिक व्यस्त हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी माताओं को इलाज के लिए बाहर ले जाते हैं। उन क्षेत्रों में दुकानें और डिपार्टमेंट स्टोर भी व्यस्त हो सकते हैं, जहां रविवार का कारोबार होता है। कई ऑस्ट्रेलियाई लोग मातृ दिवस की उन परंपराओं का पालन करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में मनाए जाने से उपजी हैं। ऑस्ट्रेलिया में मदर्स डे का तारीख संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाई जाने वाली तारीख के समान है, जो हर साल मई का दूसरा रविवार होता है। हालांकि मदर्स डे पर उपहार देने की परंपरा शुरू करने का श्रेय एक ऑस्ट्रेलियाई को दिया जाता है, लीचहार्ट सिडनी की निवासी जेनेट हेडन ने 1924 में अकेली वृद्ध माताओं के लिए उपहार इकट्ठा करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। फूल, चॉकलेट और कार्ड किसी के अपनी माँ या मातृ सम्मान के प्रति प्रेम और प्रशंसा के प्रतीक लोकप्रिय उपहार हैं। कार्नेशन एक प्रकार का फूल है जो विशेष रूप से कुछ लोगों के लिए मातृ दिवस का प्रतीक है। मातृ दिवस के प्रतीक के रूप में इसका महत्व एना जार्विस से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 10 मई 1908 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में मातृ दिवस की सेवा के लिए सफ़ेद कार्नेशन भेजे थे।

Mother's Day song, Mother's Love by Gina Hill. That was a beautiful song and well sung indeed. Matri Divas na keval jaivik mataon ke bare mein hai, balki sabhi matri akritiyon ka samman karne ke bare mein bhi hai. Aur isme sauteli maa, dadi, dattak mataen aur anya mahilaen shamil hain, jinhone kisi ke jeevan mein महत्वपूर्ण मातृ भूमिका निभाई है. आइए ऐसा ही एक सिचुएशन जिसे फिल्म अमर प्रेम में दर्शाया गया था, उस फिल्म से हम ये गीत सुनते हैं.

बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, ये था फिल्म अमर प्रेम से और गीत गाया था लता मंगेशकर ने, और इसे गाया था जब दर्शाया था तो शर्मिला टैगोर पे। दोस्तों, इस शो का समय ख़त्म हो गया है। मुझे आशा है कि आपको ये श्रद्धांजलि माताओं के लिए पसंद आई होगी। मैं अगले बुधवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक 2XXFM 98.3 पर फिर आपके साथ रेडियो हारमोनी पर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मेरा प्रणाम। आप बने रहिए, हमारा अगला कार्यक्रम है लैटिनो अमेरिकन अहोरा, और